आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे।

और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते कि आप चाहिए बनेंगे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: का कोर्स कराना, शक्ति बढ़ने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति बढ़ने का कोर्स भी हो, जिससे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो सदा खुश रहते हैं वो अधूरा, सदा खुश। कोई बात हो जाए तो भी खुश।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो जिसे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किए सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो इन्हें एडवांस मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

Damn.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो अचानक होगा उस समय पूछा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल चाहे संसार में चाहे ब्रह्मांड संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत तो परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये होगा, आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो। और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया। हिम्मत से समृद्धि दिलाओ, समृद्धि समृद्धि सुते ही दिलाएंगे, समझा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

advertite.

خوش کرنے. ایک ہی بات کا فالو کیا تو سے

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रत भी सदा उसको

स्वपान के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे। एक पापा का बच्चा, पापा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख गया है, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संघ दोष में बहुत आते, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संघ का रंग, पाप के संघ का रंग कम लगा है, इसीलिए वो रंग

0: वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संकटोष पे नहीं आओ। आज होली है ना, तो जो संकटोष में आ जाती है टेम्पटेशन, संकटोष में नहीं आओ। हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं आओ, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा। सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो, दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगा दिए ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते, तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को बाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये मिलन विचित्र

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Sorry.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे सोचते

Jesse Sakar, rob me. सदा बच्चों के साथ रहे ऐसे वतन में भी रहते बच्चों के साथ ही रहते अकेले नहीं रहते बच्चों के बिना को भी मजा नहीं आता जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं ऐसे बाप को भी बच्चों

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

fuerte.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो इच्छा पाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली आत काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो, बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लाऊँ, ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो, वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना, बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके दिखा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

Yes.

सब समाप्त हो जाता।

Ciao.

Sí.

इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना। क्यों समय की हालत को देख रहे हो? भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है। श्रेष्ठाचार

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो, टाइम पर सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बने

Estaban karam karo. Frishta artat. Double light. Kadye ka poch nahi ho. Kadye ka poch. Afyakt frishta banne nahi de. बीच बीच में मेरा गाड़ी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज थकावट नहीं होगी, जैसे ब्रह्मा

सामान बना दे। अभी अभी एक से

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

So

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साथ नहीं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी विशेष

सच्चाई अच्छी लगती है ना, जिसमें सच्चाई होगी ना उसको पाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों, पाप भी सत्य है ना, तो सत्य पाप की याद जो

0: इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

कोई विशेष

chamac. Joan Israeliti, Puritic chamac neri. For me.

रूहानी रायलिटी।

personality. Stop.

就不见去德拉巴那的。
человек.

0: सारे क्लब में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

sama

समय पर जैसे

falare deste Yegia. Forni announcement karne lag jati to bab dada puchte aap brahmanon ne apna karya kiya aapko bhi alert hona chahiye is tol sahyog dena ये भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्रह्मा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

और अति प्यार।

Isso.

Lugget ihr? Ihr habt Gott bedankt.

स्मृति में चलती है। आप सभी अनुभव सीखते हो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

इस मोटे रूप से

0: Eskilliste. Apasme.
1: Sejena, Sarimor.

0: सम्मान संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बने।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के बिना बिना देशों की सेवा कैसे होती। अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा का या क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो बिना बिना देश में गए हो वो सेवा के प्रत गए। समझा, समझ में आया क्यों गए हो? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्मा हो, विदेशी आत्मा नहीं। बिना बिना विश्व की सेवा के लिए देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था, सिंध का ग्रुप, और धीरे धीरे बिना बिना देश का, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और बढ़ते रहे। ये भी ड्रामा में बना हुआ खेल। वैसे भी पहले जड़ में थोड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तना और शाखें निकलती, तो फाउंडेशन बना सिंध के देश के निमित्त। फिर धीरे धीरे फिर क्या बढ़ता गया, भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप के साथ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई व्यर्थ वाह विकारी सोपन लगाओ का सोपन आता है तो अवश्य पर गए

सात सो जाओ अकेले नहीं, अकेले सोते हो ना तभी सो बनाते। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते, क्योंकि फरमान है या तो फरमान, अगर फरमान को नहीं मानते हो तो फरमान के बदले अरमान स्वपन में कदम हो। ये कितना अरमान है, कारण अंदर

Yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Peace.

що ти бендо, сваробо. Парамдаме бабки сад.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ऐसे तो नहीं, कभी आप मन के मालिक हो।

0: भी मन तो मालिक नहीं बन जाता। क्योंकि इस समय बाप दादा ने हरेक को स्वराज अधिकारी के सीट पर बिठाया। अब के स्वराजदारियों और भविष्य का राज
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

some.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी प्यार के पालना से

etichetarsi. Acci. Good job.

0: भी आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते रहना। एक दो को देख उनकी विशेष दूसरी बातों को नहीं देख, आगे बढ़ना ही है। बोलो, सबको ये लक्ष्य है, आगे बढ़ना ही है। वो सुनते भी जैसे नहीं सुनो, खुद को भी आगे बढ़ाओ और साथियों को भी आगे बढ़ाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी पाप की देन, तो अविनाशी पाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

பண்ணுங்க.

आप सबको

Yo kebab dadak.

0: 就是的。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संगम योग श्रेष्ठ है वो ठीक है, हीरे तुल्य लेकिन ये रहम दिल करने वाले हो, लेकिन साधारण कोर्स कराने की नहीं, वो बहुत करा लिए, वर्गीकरण के प्रोग्राम भी बहुत कर लिए, जो आए वो छाप लगे 9 लाख की छाप लग जाए। समझा क्या करना है?
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसी

ऐसे बाप दादा ने देखा है। Leak.

0: final result Achanda Kodiye koi tarikh vistar.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद। परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता आपको उठाती है।

0: सात पिएंगे, सात सोएंगे और सात चलेंगे। सोना भी अकेला नहीं है, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरी ख्याल स्वप्न में भी आती, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहती है मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठे उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो बिजनेस का आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर पास बाप दादा है, ये निमित्त मात्र उनके डायरेक्शन से काम करते। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बन के बहलाते, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो आंसू तो बाप पूछने के लिए भी आते और आपके आंसू दिल के डबी में मोती समान समा देते। अगर कभी कभी नटखट हो के रोज भी जाते हो, रोजते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रोसे हुए को भी मना आते, कोई बात नहीं बच्चे आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत जाओ, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी। तो हर दिन चिड़िया किसके साथ है?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे ओले ना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर नहीं आती। लेकिन इसका कारण क्या? सर्वशक्ति शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट नहीं होते। तार चलते हैं कभी टेंशन आता है तो सही स्वमान की सीट छूट जाती। बाप दादा ने कितने स्वामी

0: सेठ नहीं होते हैं तो जहाँ स्वमान नहीं वहाँ क्या होता है जानते हो ना, ते अपमान। या तो स्वमान है या तो देमान।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई को भक्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती, इसके भी कोई है रहस्य जो this

immersed

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चोरों नहीं, जो अलग अलग बुशारत करती हो ना उसमें थक जाती हूँ। आज मन सागा किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, थक जाती हूँ। एक ही बुशारत करो साखी का तख्त नहीं छोड़ना और कुछ तख्त नशी साखी बन के तख्त नशी आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन हो। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे तभी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना अंदर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

संस्कारों हिम्मत कभी नहीं हारो, कारण सर्वशक्तिवान बाप से

कैसे करूं, क्या करूं, नहीं।

Let the ship

सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते।

Ještě.

Tiens, n'importe.

Check is sad.

Zor sangat lama. Emergency kan? Yeah.

is at the God saying, the step will deepen.

pila, Gabo. Fiche. Yeah.

sick.

0: Σάρακο. Τι ωραίο.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। तो कौन हो सभी सहज पुरुषार्थ बोलो। याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अचानक

0: इसलिए अभी बाप दादा हर बच्चे को एक स्वाद देते हैं। हर बच्चा संकल्प किया और हुआ, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो आप ही दृढ़ता भव ये अपना विशेष स्वमान रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और उस विधि पूर्वक आगे बढ़ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी

So

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिक्किया सिर्फ सिक्किया नहीं तो, अगर सिक्किया देती भी है, देने पड़ती भी है, लेकिन किमिया और सिक्किया, किमिया रूप बन के सिक्किया दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, आपका मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्किया का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्किया दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्किया देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्किया के, तो सिक्किया सिक्किया की सिक्किया नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किमिया और सिक्किया साथ साथ हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा तो कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना, पाप को भी बहुत री जाते हैं, गलती करते हैं ना। फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया की साकर हो ना, बाप को भी याद कराती है तो आप कौन हो। आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन मैं सुस्ता से सुना के खत्म। एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Baby.

del Quito a Elena. Rosa Bradwelle. Apaneco. Papito a Rakiek.

0: और रहते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अन्नपूर्ति कराना क्षमा के ऊपर परवाने बनाना चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने ऐसे अनुभवी परवाने तैयार कर, सहयोगी बनाई है उसकी मुबारक है और बनाओ। विशेष बाप दादा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Mari Timpana. Multimillionaire. Lekin aap jaisa richest बिंदी लगाते जाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चल।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ब्रह्मांड जीवन

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता और अनुभव है सब। उस सामान स्थिति बनाने का साधन यही सहज है और ये अभ्यास
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चांद लगाओ, ये बाप दादा को अचल। तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, बढ़ाएंगे ना, सभी सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके इसके कारण सोन बने, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा
2: shot।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े बोले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की पंडाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है कि क्या करें, ये मदद करता ना, अभी वो चला गया, मदद कर जिज्ञासु था, वह पाप है। तो उस समय कौन दिखाई देते, जिज्ञासु या पाप? Yeah. स्टेज पर आ गई या आपके कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है, तो जिसके कैचिंग पावर और वाणी में किसमें मिटाज होता है और किसमें सब बोलेंगे, एक बात आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन योग की बात जोड़ो, सिर्फ बोल में भी किसमें मिठास होता है, किसमें स्पष्टता होती है, किसमें कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाती है, तो इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कौन अभी फलानी है, चाहे योग में भले कच्ची भी हो, लेकिन इस पर नंबर फाइनल नहीं होने, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं दियोंगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने स्टूडेंट बनाए, सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाए। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को योग्य कितनों को बनाए। Name. सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में टाइम पर आना चाहिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मेडिकल वाले अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा बेफिक्र बात फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। ऐसी दवाई निकालो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो तो दवाई को याद करते ही खुश हो। What the?

0: सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, करते चलो। विजय तो आपके साथ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yep।

सबसे ज्यादा

0: चेक करना, क्योंकि अभी समय है चेक करके अभी भी खजाने भरा सकते। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना भराए, लेकिन भरा नहीं सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। जैसे

0: जला दो तो फिर कभी नहीं है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: लेकिन सब कमी ये हो जाती है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर ही चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे करेंगे करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है, वो नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना, आपकी भ्रमण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आने के बजाय काका कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता। कारण क्या होता, बच्चे रोअर यार्ड में बहुत मीठी मीठी बातें

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

nicht.

cursing at the end. Hum. Shiva Vanshi. Brahma.

summer.

Nossa.

Lucia.

Espanha.

जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस समाप्त हो जाते।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी

见。Mati biarin.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है देखने के लिए

0: 走りバッツね。バッタだね。アイトラサバシソナレア。ブラタネイラテン。ブラルテン。ねえ。アッチャ。トエクオルビサバシバッツナテン。バッタだね。समय प्रत समय सदा ने कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे। इसलिए ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात रेस नहीं करना, रेस करो अच्छाई की, बुराई की रेस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 100, 2001 में होगा, 5 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एक बार रेडी नहीं भी बनो, लेकिन इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं एक बार रेडी। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत
3: से रुका हुआ।
2: जो भी अपन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस

0: चेक। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा अभी जो बाप दादा ने कहा वो हर एक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो कुछ नहीं देखना है, लेकिन संकल्प स्वरूप में सभी बैठो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Bye.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रतिज्ञा, चाहते जैसे वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करते हो, वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव कौन और कर्म का ज्यादा कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देख स्थिति द्वारा बाप को प्रतिज्ञा करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती है इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसा कोई बन सकता है, तो आप उनको ये प्रतिज्ञा में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रमाण को ज्यादा मानते, सुनने से भी ज्यादा देखने जाते। चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा जानने में मेहनत।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Fin.

Isra.

Vapa.

Critic.

Σέμπολρα. Λέγεν, καϊσότσα τέα.

Startat. Is a thing.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा मुस्कुराती रहती है तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़ी खड़ी तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा। बाप से मिलन का सदा आगे बढ़ाता है, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: ये शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे। माताओं को सहज चाहिए ना, बाप दादा यही सब माताओं को बच्चों को कहते हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है

Yeah.

Onokuya.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर। परमात्मा ने विल की है पावर्स की विल पावर, तो परमात्मा विल पावर के आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये परमात्म टच के बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती, चाहे देश में चाहे विदेश में। क्यों कैसा ऐसा तो नहीं, इस संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों क्या ऐसा वैसा, ये पहले आपस में सोच के फाइनल करो, वो बात अलग है। लेकिन जब सामने जाते तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है। आकर तो सभी कुछ को नहीं, अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना, गेट बंद। गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना। आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, ये तो अलमेटी ताले लगा देना, कार्ट्रिज का नहीं काट का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने बैठे हो लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो पाप का इशारा डायरेक्शन श्रीमद सकेंगे, टच होगा, ये करना है, ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय

जप जाओ, जैसे जाओ वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है, जहां जाओ जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस वर्ग से ये आ रही है।

0: उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्मय अनुभव सुना है तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये सेवा करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को और

जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो।

विश्व के आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है, सारे विश्व की आत्माओं को see.

0: समझकरमे
1: ऐसे स्मृति से

0: सीवीटी पूजा नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करती है, आरती करती है। ऐसे पूछे अपने को ऐसे समझते हो, ऐसा नशा है नशा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: श्रेष्ठ रंग

Yoga.

combined, but not necessarily.

Holy Panchayat Devi.

con una charretena. Que amarí, bolí.

c'est pas votre

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते संबंध संपर्क में ला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते। फरिश्ता बन के ये अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की अशांति की बीच बीच में भी बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेंगे, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने। कभी कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं, बाप के तरफ कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित कर दे तो उसका पुण्य नहीं बनता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर तेरा मेरा, तै और मैं, इस शब्द

0: आकुर चोर के फिक्र में आ जाते, आते फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो। सेवा का फिक्र वो अलग बात है, लेकिन वो फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत बहुत प्यार, ऐसे नहीं समझे कि हमारे से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की। बिंदी की तो बिंदी की कितनी महिमा है? इसीलिए बाप दादा सदा कहती है कि तीन बिंदु से

0: चबाते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बन जाएगा ना, दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सब कट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाजा

सभी बच्चों को भैया।

0: चलते फिरते दे अब माने बनना यही बेहद का मेरा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh.

जाती है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

मसाज हो जाता है।
आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

awesome.

0: Intentions Reiki.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माए दुख से चिंताओं से अशांति से मुक्त हो, जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो, जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल प्राप्ति। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त न्यारी और बाप की प्यारी रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, संपन्न है या कम है। अगर कम है उसको जमा करो, खाली नहीं रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहिए।

Ciao.

बड़ी। सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने। नंबर

से कोई बच्चों को कहां से चुनकर अपना बना लिया। पांची कन्नों से अपने बच्चों

विश्व का।

कितना भी सा।

0: बच्चों को ही प्राप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सक्सेसफुल कभी भी जो नहीं होते उसका कारण क्या है। वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो के मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो क्या? मानते हैं तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ना, अधिकार है शक्तियां पीछे वाली सुनाओ, अधिकार है पक्का है, तो अधिकार प्राप्त होने में अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है मेजर रेड्डी अपन ने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते, पता नहीं होगा या नहीं, तुझे अपना ही कमजोर पर्सन चित नहीं, लेकिन पर्सन होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाते और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाते। उदय विजय ये आपका स्लोगन है, दस वर्ष वालों का है, पक्का है, पक्का सभी का। जब ये अभी का स्लोगन है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान तो सदा क्या रहना चाहिए? पर्सन चित या पर्सन चित, तो माया अपन नहीं कमजोर संकल्प की चार बिछा लेती और अपने जाल में फंस जाते। विजय ही है इससे इस सच कमजोर चाल को समाप्त करो। फसो लेकिन समाप्त करो। है शक्ति है समाप्त करने की। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जान को पढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नहीं समझती है कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है। सेवा ज्यादा चाहिए।

स्वरूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मण ही बहुत आगे रखेंगे पूछेंगे, ये सब भाव स्वार्थी सेवा के लिए जो सच्चा सेवादारी है आजकल के हिसाब से शिविरों की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय के प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी, आप सेवा के बिचारी नहीं, आपके पास सेवा

Oh.

Suara

0: すりゃ冷まして、やはんこびみれともたちありょうけびえとあがるまのあばぶなちゃんすうすこてでよとびあぶかしやるちゃいあぶねねきやりけんてやきすこちゃんすとおすめびあぶかしやるちゃまうきょんくさちゃだいまんばなねとりさぶきたびさまちろえせやらびれねいちゃん
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है। और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं कि नहीं आते? आते हैं लेकिन माना बीच बीच में लेकिन आ जाते हैं, आ जाते हैं। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की है, मेजॉरिटी प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है? टीचर्स, एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है? आ गया, याद तो आ गया ना? आ गया याद, आ गया। अच्छा, एक शब्द है मैं अपमान के रूप में भी मैं आते हैं, और कमजोर करने में भी मैं आते हैं। मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वो ही राइट है, वो ही होना चाहिए। और जब होता नहीं है, ये अपमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है।

नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाते हैं और मैं कष्ट भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है और अपमान की निशानी जानते हो क्या होती है। कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अपमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करे। शराबी कोई कहेगा ना, ये

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

而且。

0: जैसे आज हर एक के सूरत में खजाने से भरपूरता की झलक है,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, आप अपने को।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होते हैं। तुम पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है थोड़ा मर रही है क्या? ब्रह्मर जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्रह्मणों का कदम। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रही है श्रेष्ठ भाग्य उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष बना रही हो ना, क्या क्लास कराते हो मुक्ति वर्ष है? मुक्ति वर्ष है 99 में आना है, 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वो हाथ दिलाओ ताली नहीं बजाना। अच्छा सभी हाथ उठा रहे। अच्छा देखो हाथ दिलाना बहुत सहज है। होता क्या है वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, रच की न जाए ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो संभाल के हाथ उठाओ, बाप दादा के पास इस टीवी में आवे ना आवे बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति बोले से

Wow.

什么一个可生呢、啊、生个那不个可生啊，不个可生啊，天等那个可生啊，有个给小丢个可生啊，地面气氛给萨尔巴古诺个可生啊，这么那一天都非得爱萨这么个那个什么Wow.
जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही, एक एक खजाना।

suami. Sab Freddy. Chote bache bhi hain. Teachers bhi hain. Kyunki teachers hi to samarpan ho gayi hai. Kumariyan bhi hain. Pravrti wale bhi hain. Sab Freddy. सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अरिसी थी, तीना बच्चे हमको कब चांस मिलेगा मिलने, तो अच्छा हुआ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्रह्मांड मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो वही बड़ा, लेकिन सब
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yeah.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Dios.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Jai saman sambarak mein chehra aur chalan nimit paoga aur uski visheshta dusri hogi nimit paav
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: sayogi panaw. Koy na koy sayog, chay mansaka. Chay polse koy sayog to. Chay saman samparakse. Sayog to. Isa.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी, अगर नाम निकालो तो बहुत है। वतन में आज
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा तो कर रही हूँ, खाली तो नहीं। आवाज हो जाता है, ऐसे कोई आत्मक बम लगाओ, एटम बम नहीं, आत्म बम। अच्छा बैठ जाओ, मुबारक को बोल, टाइम पर पहुंचने की मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उसकी

咁事话，咦？问生，话问好问件事话，你搞阿边？阿边死个路？Sampadatwara Seva Kartiyo Lekin Apu Isamansa Seva Ka Abhyas Ati Avashyak.साथ-साथ अभ्यास करते चलो ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएंगीSwallow.

sad. Man sah Akshanta Samudra kitne pakke जैसे स्थापना में
Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो, निश्चय का पर्तक्य परवान है, रूहानी नशा
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साथ नहीं छोड़ो।

0: शक्तिवान सात का ऑफर कर रहा है। ऐसी ऑफर सारे क्लब में मिलेंगी नहीं मिलेंगी ना, तो बाप दादा भी साखी हो के देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। संगम युग के सुख और स्विचों को इमर्ज रखो, बिजी होने के कारण बुद्धि बिजी रहती है ना, तो स्मृति मर्ज हो जाती। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है, बोलता है बाप, तो क्या कहेंगे? नो। अच्छा ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन ये मर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है, स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति और मर्ज रूप की स्थिति, इसमें अंतर है अंतर है पांडव, है अंतर। तो क्यों नहीं इमर्ज रूप में रहते? इमर्ज रूप का नशा शक्ति संयोग सफलता बहुत बड़ी है, याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। भूल नहीं सकते, ये राइट। हाँ कोई विघ्न के वश हो जाती है तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: उस समय थोड़ी